0: और आलम बखार वाला यार रोग आला डॉक्टर भ्याला
1: रोगी मात्र रही ना मगला।

नथिंग इज इम्पॉसिबल, कहता हूँ मैं सच बिल्कुल, नथिंग इज इम्पॉसिबल, कहता हूँ मैं सच बिल्कुल। आओ यारो डांस करें, रिदम से रोमांस करें, आओ यारो डांस करें, रिदम से